0: इन्हें आर नेत यार, ऐसा गबरू, ऐसी आवाज, ऐसी वोकल, जानदार, दमदार, कमाल दा आर्टिस्ट आ। ते खुशखबरी तुहानू दईए कि आपां इहनू लैके आ रहे हां अरनीत नू तुहाडे वास्ते टोरंटो शहर दे विच बहुत जल्दी अक्टूबर दे विच। फिर नचांगे, भंगड़े पावांगे। ते यार क्या बाई दे हिट हिट सोंग है।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत सुनदा अरनीत नू,
0: सारे सुनदे, मैं भी सुनदा।
1: मेरा बहुत फेवरेट है उहनां दा एनकां वाला गाना।
0: आहा एनकां वाला सुणीए फिर ओह वी, सुणदे।

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ट्रिपल जीरो वन ते गलबात कर लेनी है सो इत्थे मैनू दिओ इजाजत सुणियो ते गुड नाइट रब राखा ते लव यू जिंदगी जिंदाबाद इन्नी बारी जिंदाबाद कहण ते जिंदगी जिंदाबाद हो जानी चाहीदी आ सो सत श्री अकाल गुड नाइट

छोटी छोटी सब्जियां भी लगा लेने या कोई फुल पौधे लगा लेने, कोई दातियां, कोई रंबा, कोई कई या कोई किसी किस्म का तुहानू औजार चाहिदा होवे इस तरह के काम कर करने वास्ते ते तुहानू ब्रह्मटन कैश एंड कैरी तो मिल सकता। कोई छोटी मोटी दवाई कोई लैनी होवे घर दे विच जिहड़ियां अक्सर असी फस्ट एड के तौर पर रखते हुंदे सी पिंडां दे विच, वो सारिया छोटिया मोटिया दवाइया तुहानू इत्थों ब्रह्मटन कैश एंड कैरी तो मिल सकदियां ने। डिस्पोजेबल समान लेना होवे किसी भी रंग का किसी भी डिजाइन का और किन्नी भी क्वांटिटी लेनी होवे उस हर किस्म का तुहानू सिल सकदा ब्रह्मटन कैश एंड कैरी तो। घर दे विच कोई विआह शादी कोई होर कोई रसम है अच्छी और उस रसम के लिए

वाह यार क्या बात है। देखो याद तो आई जाती है, गल सही है। वैसे ना जदों प्यार हुंदा किसी नूं ते प्यार ऐसा हुंदा कई बारी कि बस बंदा याद ही करता रहिंदा 24 घंटे। 7 दिन बंदा उठता ते पहला ख्याल उस इंसान बारे आउंदा, ते बंदा चाह पींदा तां वी बंदे नूं ख्याल उस इंसान बारे आउंदा। बंदा ड्राइव करदा ते बंदा कहिंदा यार कि खब्बी सीट ते नाल बैठी होवे तां इहदे वर्गी कोई रीस ही नहीं। सो याद तां देखो प्यार करन वाले कर ही लैंदे ने। सो प्रोग्राम है पंजाबी लैणा ते अज दीआं गल्लां बातां वी कुझ तुहाडे नाल करदे आं शुरू। असीं ना अज सवेरे एक डिस्कशन कर रहे सी सवेर वाले प्रोग्राम दे विच कि मैं एक सिचुएशन शेयर किया, सुनियो ध्यान नाल ते तुसीं अपनी फिर कॉलां करियो। एक कुड़ी है ते उस कुड़ी ने उहदा हुण किसे नाल एक बंदे नाल रिश्ता चल रहा। उहने ना अपने माँ बाप नूं दस्सिया कहिंदी कि मॉम डैड देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, ते उह कुड़ी पंजाबी है ते कहिंदी कि उह गोरा, ते असीं ब्याह करवाउण बारे सोचिया ते इह साडी डिसीजन है जो वी है। चलो गल्लबात हो गई उहनां दी ते उह उहनूं कहिंदी, ते उह कुड़ी कहिंदी माँ बाप नूं वी चलो मेरा फाइनल डिसीजन है। चलो बच्चे हुण देखो अक्सर उहनां ने ब्याह करवाउणा, उहनां दी आपदी चॉइस है, जिहदे नाल मर्जी करवाउण। पेरेंट्स ने पहला ना नुक्कर बड़ी कीती कि नहीं बई भी तू ब्याह करवाउणा तां तू अपने मुंडे नाल करा, ये वो दिस दैट। चलो गल्लां वधिया, कुड़ी कहिंदी कि नहीं मॉम डैड देखो मेरी ये डिसीजन है। कुड़ी वधिया पढ़ी लिखी है, वधिया कम कुम करदी है, ते उहदे पेरेंट्स कहिंदे चल ठीक है हुण तेरी मर्जी है, तू ऑलरेडी फैसला कर लिया ब्याह करा ला, बट असीं देख आनंद कारज करनी, असीं कोई चर्च चुर्च दे विच जाके नहीं तेरा ब्याह करना। ते उह कहिंदी कि दोनों चीज़ां होणगीआं, देखो मुंडे वाले वी चाहुणगे कि असीं वी अपणीआं जो रस्मां ने उह करिए। उह पेरेंट्स कहिंदे सॉरी भी असीं तां उत्थे आउणा नहीं हैगा, जे तूं करना ब्याह सिर्फ आनंद कारज कर ते दैट्स इट। उह मन

0: के लिए आपको ऑप्टिक वर्ल्ड डॉट सी ए में चाहिए, आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का डीटी पर कॉल कीजिए 9054567333 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Since I've last seen you, it's 9
2: We didn't have good news here. When COVID happened, disaster. Everyone had a rock business.
3: You can now make pizza in your backyard that you couldn't get.
4: लो जी एक बारी फिर अपने टेस्ट की गल कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताही का सिफ्ट कर लगे हैं, जरा सुन के सोने हो
5: showing your property and

महेंद्र गुड़ सपुर तेरे रहा पंच बेखानी एक गरीबा राधा पदा तनखानी खेत कर है हर बहुत संताव है आया शरण तुहारे कर कर हारियो अनेक पाव पाती चोदह कदम नाही एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया जीत ले ओए महा बेखानी सहज सोहेली बारी कहो नानक मन भया परगासा।

और बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा दुख पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल गुण गाओ गुरु नानक भय दयाला।

पाया पाई ठान पई संसार अपने जीव जंत आपे राखी जमहे कियो हटतार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सरणी उबरे पाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समरथ सो पाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है पाई मन तन शीतल होए और मल्ला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ

0: रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: सूर्य कवच स्तोत्र।
2: अस्य श्री आदित्यवचसोत्र महामुद्रस्य स्थितवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः यो देवता घृतं सूतं शक्तिः आदित्यं कीलं महादित्यप्रसाद सिद्ध्यते सूत्रमन्त्रं जपे विनियोगः। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा।

श्रोताओं का धर्मसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है। तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया। और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैक यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इस मॉडल पर रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उनका जो दूसरी लोकेशन गोल्फ में, आप उनके स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-7900045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा। अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए एच के मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। और उनका आप नंबर लिख लीजिए, 416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर लीजिए और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं एच के मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कुरियर डिपो अब आपके लिए वो रोड पर मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप masterpollutiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 सिस्मा रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो। 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सागर में।

काली हीरो की यहाँ भोली चकले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है धूम में मस्ती में।

0: सारे फूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ कह सावन यहाँ कह सावन बालों में खिलती है कलियां सालों में।
1: ये जो गाना है वैजयंती माला फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना है, लेट्स गो टू
2: भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत दिखलाई, भारत तो यूं चांद जाना मिलता, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जब कला अपना भारत, वो भारत है नीचे संसार चला, संसार चला और बढ़ा, जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, फूले बसंती आए।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए

है तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कतलाज में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली यात्रा किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो हैं दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोगों अगर ये गाना लता जी का नाम अब ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरगत का पला। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

रहमत तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ च।

0: ਆ ਲੇਡੀ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਘੁੰਮ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੰਗੀ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਰਤ ਕਾਰਨ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਖਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਕਰਤ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਭਾਈ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਹੈ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀਆ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ
0: ਕੈਸੇ ਹੈ?
1: ਏਕਦਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੁਣਾਓ ਛੋਟਾ ਸਾ।
0: ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਆਪਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ
1: ਓਕੇ। ਏਕ ਬੰਦਾ ਏਕ ਬਾਰ ਨਾ ਉਸਕੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਮੇਰੇ ਐਸਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੋ ਵੋ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਮੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਾਂਧਤਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਲਿਖਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੁਝੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਸਪੇ ਡਾਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਔਰ ਵੋ ਹੀਲੀਅਮ ਕਾ ਬਲੂਨ ਉਡਾ ਦੇਤਾ, ਵੋ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਤਾ ਗਿਰਤਾ ਜੇ ਕਹਾਂ ਉਸਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚੌਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਤਾ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਕੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕੇ ਹਾਥ ਲੱਗ ਜਾਤੀ ਪੜਤੀ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਪੜਤਾ ਵੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਤਾ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕਾ। ਤੋ ਵੋ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬੋਲਾ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਦੇ ਦੋ। ਤੋ ਵੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਕੁਲ ਕੁਲ ਆ ਕੇ 27,000-28,000 ਹੋ ਜਾਤੇ ਉਨਕੇ। ਤੋ ਵੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਅਰਦੀ ਲਗਾਈ ਥੀ? ਕਹਤਾ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਈ ਥੀ। ਤੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦੀਏ ਲੈ ਪਕੜ ਤੇਰਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਉਹ ਲੇਤਾ ਖੋਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਤੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੀਏ 50 ਤੇ ਮਿਲਤੇ ਉਸਕੋ 27 ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਛੋੜ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਜਬ ਐਸ ਐਚ ਓ ਖੋਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੂਨੇ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇ 50 ਮਾਂਗੇ, ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ 27 ਦੀਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੇ ਹੀ ਉਤਾਰੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਏ।
0: ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ?
1: ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੋ ਇਹ ਲਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 27 ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ 50
0: ਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਕਈ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ ਆ। ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਕੇ ਲੋਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੇਂ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ?
1: सर बेसिकली क्या है कि जो बिल्डर क्वालिटी के लॉक्स होते हैं उनमें सिर्फ लोहे की पत्तियां होती हैं एंड दैट्स इट, वहीं पे उनकी कहानी फिनिश हो जाती है। जो जर्मन लॉक होते हैं उनमें साइड पे ही नहीं होते सिर्फ लॉक, वो टॉप पे भी लॉक करते हैं। तो जो जिसको कहते हैं एयर टाइट विंडो, वो एयर टाइट तभी हो सकती है जब ऊपर से भी बंद हो और साइड से भी बंद हो, और एक ही लॉक से, सिंगल लॉक से चार जगह पे लॉक लगते हैं
0: जी। और जर्मन लॉक दे ली, मैं कहना ना कि चोर का गोडा टूट जूगा पर तुम्हारा दरवाजा नहीं टूटूगा। राइट विंडो फोर्स का यह मैसेज होता है, चोर का गोडा टूट जू थोड़ा दरवाजा नहीं टूटू। विंडोज के बारे में बताएंगे, उनका जो शीशा है ग्राउंड फ्लोर पे आप कौन सा लगाते हैं?
1: सो अमन भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जो ब्रेक इन की, तो हमने उसके लिए सोल्यूशन निकाला है कि एक लैमिनेटेड ग्लास होता है, वो लैमिनेट की जो शीट होती है उसको 6 mm के ग्लास के बीच में सैंडविच किया जाता है। अब पहले तो 6 mm का ग्लास तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत देर लगेगी तो वो तोड़ने में, तो लेट से अगर क्रैक आ भी गया तो उसका हाथ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अंदर फिर वो प्लास्टिक की शीट होती है। इस लेवल की प्रोटेक्शन के साथ अमन भाई जब हमारी ओपीपी के साथ मीटिंग हुई थी, जैसे सेमिनार होते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि इनका जो टर्न अराउंड टाइम होता है जो ब्रेक इन करते हैं उनके पास 3 मिनट का टोटल टाइम होता है, 1 मिनट वो ब्रेक इन के लिए लगाते हैं और बाकी 2 मिनट में उनको साफ करना होता है। तो इस ग्लास की इतनी तगड़ी टेनेसिटी है कि ये आप 10 मिनट में वो लगा रहेगा, उसको हाथ नहीं जाना अंदर, तो इतना वो समझ ही जाते हैं कि देख के उनको पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी लैमिनेटेड ग्लास है, तो वो वैसे ही निकल जाते हैं।
0: हाँ, सो नंबर है, अपने इस कंपनी का नंबर दीजिए।
1: 416-206-3200
0: राइट विंडो फोर्स 416-206-3200 लाइफ टाइम वारंटी, द मतलब क्या
1: सर बेसिकली लाइफ टाइम वारंटी.
2: दिस इज AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: ओह यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
7: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
0: 416-518-3200 नंबर है. 416-518-3200 शो में थोड़े कॉल्स आ रहे हैं. मेरे नाल शबानू है राइट विंडो फोर्स तो असीं गलबात कर रहे हैं. जिन्हां दे किसम दे विंडोज और डोर्स चेंज नहीं कराए, आ मेरे को एक एनर्जी बिल रख के बैठा बैठा मुंडा मेरे को. हाँ जी, सत्या की हाल है?
8: सत श्रीकाल, चढ़ती कला जी.
0: चढ़ती कला साहल मेरे नाल. साहल साढ़े नाल हॉट वाटर टैंक की एड रन कर लैंदा. इन्हें एक बिल की फोटो रखी है, मैं देखो जो एक बिल है जिहड़ा
8: $557 का मंथली बिल है. यह
0: $557 मंथली बिल है. सितंबर अक्टूबर के महीने का बिल है. लास्ट ईयर का,
8: लास्ट ईयर नहीं, अच इस महीने का.
0: अच्छा इस महीने सितंबर 26, अच्छा 2026 है.
8: हाँ जी हाँ जी.
0: अगस्त है
8: इस महीने का. नहीं एक बिल एडवांस चल देना,
0: एक महीना एडवांस. अच्छा मूहरे मैं करके देखी स्क्रीन पूरी.
8: जी जी जी.
0: सो यह हैगा जिहड़ा एड्रेस है वाटर हीटर
8: हैमिल्टन का. जी
0: हैमिल्टन का एड्रेस है, अपर हिल वाले एरिए का.
8: हाँ जी.
0: तो ये इन्होंने बिल की कॉपी भेजी है. तो जो बिल एनर्जी के आ रहे हैं, अगर तुसी विंडोज अपनिया तो इक्विपमेंट अपना प्रॉपर रख दो, थोड़े बिल बहुत लैवल तक थले गिर जाते हैं. मैंने याद है कि एक घर के बहुत बिल आता सीगा, विंडोज चेंज करके आया सी शिवानू जाके. तो उन्होंने बाद कॉल आया कि तुसी चेक करो कि थोड़ी एनर्जी लैवल ठीक चलती पई है कि नहीं चलती पई, क्योंकि थोड़े बिल दे विच बहुत फर्क पै गया. तो उन्होंने दस्या सी कि विंडो चेंज हुई है. सो शबानू अगर मेरे पास पैसा नहीं है, आप अंदाजन बताएं, मेरे घर की 15 विंडोज डोर डोर हैं, 2 डोर हैं, 15 विंडोज हैं, 3 डोर हैं, एक साइड डोर हो गया, एक स्लाइडिंग हो गया, एक आगे वाला. तो मेरा घर 2000 स्क्वायर फीट का है. अप्रोक्सीमेट मेरा कितना मंथली खर्चा बनेगा
1: अमन भाई? तकरीबन $120 to $150 के अंदर मंथली में आप ये सारे 15 विंडोज 3 डोर चेंज हो जाएंगे.
0: पर मंथ $200?
1: लेस देन दैट.
0: सो 100 to $150 दे थोड़े बिल ही घट जाने ने एनर्जी दे. तुसी शिवानू तो विंडोज और डोर्स लगवाने ने. नंबर है 416-206-3200. जिन्हें तरीके ने समझाता, बाहरों 4 बंदे बुला लो, 2 बुलाओ, 1 बुलाओ. प्राइसिंग ते ना गल ना करियो, क्वालिटी ते नाल गल करियो. अपने पंजाबियों नूं या अपने इंडियंस नूं बहुत भैड़ी आदत हुंदी है कि क्वालिटी पुछनी नहीं. शिवानू आप अच्छे लोगों के साथ काम करो, कम लोगों के साथ काम करो, ठीक है?
1: अमन भाई ये कमाल है रेडियो आवाज का और आपका. मेरे पास मतलब एक नहीं है, मेरे पास इतने एग्जांपल हैं कि बंदे ये कहते हैं कि यार हमने आपको रेडियो आवाज को सुना था, अमन भाई ने बताया था आपकी विंडोज का, हमने कोट नहीं लेनी कहीं और से.
0: हाँ
1: आप बस फाइनल दे दो. मैं इतना प्रेशर में आ जाता हूँ. हाँ यार कहीं बंदे ने गलती से ले ली कोट तो ऐसा था, तो मैं अपनी तरफ से पूरी एहतियातन मैं अच्छा कोट ही देता हूँ हर जगह से.
0: 416-206-3200 बहुत शुक्रिया शुभानू. 416-206-3200 टिचर बटन की जोड़ी वांगू साडा साथ है. और शुभानू नू कई साल हो गए इस रेडियो राही जड़ा हैगा थोड़े तक सारे तक जो विंडोज और डोरस का जड़ा हैगा एस्टीमेट देंदे. 416-206-3200 ते कॉल कर सकते. बहुत शुक्रिया.

करले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हूं तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: अपने घर कोई भी फंक्शन ऑन करना हो ऑर्गेनाइज करने बारे सोच रहे हो तो टेंट जरूरी चाहिए होंगे तो इन्होंने को 10x10 फीट तो लैके 40x160 सारे साइज के टेंट्स अवेलेबल ने। क्लीयर टेंट भी लै सकते हो, वाइट टेंट्स भी है, सारे वाटरप्रूफ टेंट्स लैके आते हैं। मौसम कोई भी होेंट तुम मरली टेंट सर्विसेज का लगवाओ। डांस फ्लोर, टेंट फ्लोर, स्टेज, LED बार्स, शैंडलियर, लाइनर विद ड्रेपिंग, डेकोरेशन का इन्होंने को सारा समान अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट तरह चेयरस एंड टेबल्स लैके आते हैं। बहुत सोहने कारपेट्स लगवाते हैं टेंट के मौसम के अकॉर्डिंगली हीटर्स या फैनस लगवा सकते हो। तो लग्जरी पोर्टेबल ट्रेलर वाशरूम्स लैके आते हैं, दो सैपरेट यूनिट मैन एंड वेमेन के लिए। तो तुम इंडिया वांगू लंबी लंबी लड़िया लगवा के अपने घर की पूरी प्रॉपर लाइटनिंग करवा सकते हो मल्ली टेंट सर्विसेज तो। नंबर इन्हों का नोट कर लो, 6479992569, 6479992569, मल्ली टेंट सर्विसेज का नंबर है। अगले कॉलर 1122, हाँ जी सत श्रीकाल। ठीक है जी, मैं कोई ना वो सुना दिनी तो थोड़ा टाइम दियो। थैंक यू सो मच थोड़ी कॉल दे ली। एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लवांगे ते स्टेशन आईडी लेके वापस आने हैं। सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
1: ਮਾਣ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਫਾ ਮਾਰਟ ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੈਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਸੋਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹਲਸਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। 4 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ, 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। 11x11, 10x10 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ 120 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ 24 ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਮਟਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ।
2: Let's go to the X. The CNE Grand 5050 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
3: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: चक्कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ते ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपर बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचा नु कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नु कॉल करो, जेडे छोटे तो छोटे घर तो लेके वड्डिया बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000
4: फिर तो बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो दे नाल। तुसी टुनन कीता होया है, मैं हां तुहाडी होस्ट मनप्रीत कौर तौर। उम्मीद है तुसी अज दा प्रोग्राम एंजॉय कीता होएगा। रेडियो तो बाद तुहानू कोई भी किसी भी स्पॉन्सर दे बारे कोई जानकारी चाहिए होवे, किसी दा नंबर चाहिए होवे, या तुसी अपनी एडवरटाइजमेंट रेडियो दे विच करना चाहुंदे हो, अपने बिजनेस दी प्रमोशन्स करना चाहुंदे हो, तां जरूर तुसी हैड ऑफिसिस ते कॉल कर सकदे हो। नंबर दो ने, नंबर है 416-725-2551, 416-725-2551, या फिर 416-457-3381, 416-457-3381। इन्हां दोनों नंबर से तुसी कॉल, टैक्सट और वट्सएप कर सकते हो, तो तुहानू इह दुबारा रीच आउट कर लेंगे। जरूर तुसी गलबात कर सकते हो तजिंदर सिद्धू सर दे नाल, ते नाल सिमराज सिद्धू जी दे नाल। एनी टाइम तुसी इन्हां नू मैसेज छड्ड सकते हो, तुहानू बैक कॉल कर लेंगे, या फिर तुसी कॉल्स कर सकते हो डायरेक्टली नंबर से 416-725-2551 या फिर 416-457-3381। उम्मीद है तुसी अज दा प्रोग्राम इंजॉय किया होएगा। वीकेंड सारा दा बहुत ही वधिया होवे, सारा दे घरां जिन्हां दे विच खुशियां ने, कोई खुशी दा माहौल है, तुसी सारे पूरा इंजॉय करो, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स नूं पूरा टाइम दिओ, अपने आप दे लिए पूरा टाइम कढ़ो। ते फिलहाल मैं इत्थे इजाजत लैनी आ, मेरी मुलाकात तुहाडे नाल हुण मंडे नूं होएगी दोपहर दे 3 बजे, ते उदों तक तुसी हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो। सुरजीत खान जी दा लास्ट गाना तुहाडे लई छड्ड के जा रही आ, इहनूं वी इंजॉय करो। ते मैं मनप्रीत कौर तूर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਉਂਗੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: दीप ते प्रीति थोड़े नाल बहुत सारे गल्ला करन हर शनिवार दे वांग इस बार भी आ गए। क्यों दीप, वेलकम एवरीबॉडी।
1: ओहो क्या बात है, मैं क्या अज ना प्रीति ने टोर कड्डी है। अज प्रीति ने टोर एदा दी कड्डी, मैं दसदा मैं जी ने लंबा जिहा सूट पाया होया, ओनू की कहंदे ने नु वैसे
0: कुर्ती है यार,
1: कुर्ती मैं जी मैं ते गुड़ती लग रही है पूरी। ए गुड़ती इन्नी चंगी है कि साडा पूरा ना स्टूडियो दा फर्श साफ हो गया। तुरी आ रही सी, मैं क्या जी पहुंचो पहुंचो पहुंचा पहुंचा कर करके मैं क्या जी सारा
0: लेबर
1: डे है जी, मजदूर दिवस लेबर पेन ना समझ लो समझे।
0: बट नहीं, मैं यही विश कर दिया कि यार फर्स्ट मई नो नया महीना आया वा, एंड आई थिंक दीप भी यही कहना चाहूंगा कि ये नए महीने
2: तुहानू इलेक्ट्रिशियन दी लोड है, सानू हाई रिस्क इलेक्ट्रिकल ते कॉल करो। हाई रिस्क क्यों? क्योंकि साडे कोल लाइसेंस नहीं है ते सी इलेक्ट्रिकल परमिट नहीं लेंदे, जाने कि तुसी पक्का नहीं कह सकदे कि साडा काम किन्ना कु सुरक्षित जां कानूनी है। पर एक गल पक्की है कि जदों भी असीं आवांगे असीं तुहाडा टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो। असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं आग नहीं लगेगी शायद।
3: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओ ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई highlicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लो एक सुनेहा।
4: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca।

0: ब्याज है
1: साल का ढाई बस
0: साल का 2.5% ब्याज है सिर्फ दैट्स इट. नंबर फाइव नो गारंटी.
1: अच्छा
0: नो गारंटी मतलब जैसे कल मैं बैंक के लोन लेने के लिए असली में क्या था उसमें क्या वो मुझे कहते 2 साल आपकी कंपनी पुरानी होनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए अरे भाई साहब माफ करो भाई. तो मतलब अब यहाँ पे देयर इज नो गारंटी नो सेटिंग नो अप्रोच नो नकली कागज. जितना ज्यादा फैमिली साइज नो एज लिमिट. जितना ज्यादा फैमिली उतना ज्यादा बेनिफिट आपको आपके खाते में बैंक से नहीं गवर्नमेंट से.
1: सो जे स्टडी तो बाद 1.5-2.5 साल बाद लोन मोड़ना स्टार्ट करना उन्ना टाइम तो जीरो आ इस तो जे $1,00,000 का लोन मिलता तो यानी कि साल बाद $2,500 ही एक्स्ट्रा मोड़ना साल का है जी.
0: बिल्कुल सही कहा आपने.
1: तो जे आप पहला मोड़ना हो पहला भी मोड़ सकते ओपन लोन है.
0: देखो जी ओपन लोन है मैंने जब अपना करा था तो उसमें मैंने 3 साल में लोन मोड़ दिया था. बट हाँ डिपेंड करता है आपकी इच्छा होती है इसमें. और अगर आपकी जॉब नहीं लगी टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो ये नहीं है गाड़ी के लोन में गाड़ी उठा लेते हैं घर के लोन में घर उठा लेते हैं यहाँ पे आपकी कॉपी पेन उठा लेंगे क्या. ऐसा नहीं है. अगर आप लोन नहीं दे पाते गवर्नमेंट आपको लोन डेफर कर देती है 1 साल 2 साल 3 साल.
1: ओके सो इदे विच तां फिर मैनूं लगदा वी जिहड़े बंदे ने दो चीजां ने ना एक तां गवर्नमेंट कहिंदी वी जिहड़े बंदे ने भाई पढ़ना PRS जिहड़ा बहुत लोकां नूं हुंदा कि असीं अकाउंटिंग दा कर लीए असीं बिजनेस दा कोर्स कर लीए असीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लीए असीं HVAC कर लीए आ कर लीए PSW कर लीए उन्होंने फीस भी भर देनी आ तुहानूं लिविंग कॉस्ट भी दे देनी आ ते इहदे विच तां फायदे ही फायदे ने. सो हुण तुसीं इह दस्सो तुहाडी फीस किन्नी आ.
0: काम होने तो बाद $199 फ्लैट फीस है.
1: की कह रहे हो 199.
0: बिल्कुल जी इतनी
1: भी सही है. सोना
0: काम हम कॉस्टो की तरह वॉल्यूम में काम करते हैं ना कि लोगों को छीनने में विश्वास रखते हैं. ईमानदारी से काम करते हैं काम होने के बाद लेते हैं अपने पैसे शुरू में.
1: अच्छा जो अप्रूव हो जू खाते च पैसे आ जाएंगे
0: क्लाइंट दे
1: क्लाइंट दे पैसे जे खाते आ जाएंगे ते तानू $199 दे देने.
0: हां जी हां जी तब हम उनसे मिनते करते हैं वो हमारे पैसे दे.
1: वेरी गुड नंबर बोल दो असी हुणे कॉल करदे हां जी.
0: बिल्कुल जी अभी हुणे कॉल करो एस्टीमेट लो 437-264-31-75 437-264-31-75 हुणे कॉल करो एस्टीमेट लो. प्रॉपर ऑफिस है टीम ऑटन में नहीं मिलते जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हर अंटारी डेरी पे 8 साल से 7 बंदों का स्टाफ आपके लिए रेडी है 437-264-31-75.
1: लो दोस्तों सो गवर्नमेंट ये चीज ऑफर कर रही है लोन तुसी एक लोन भी कहदा है तो बटर हुई आ ते बटर रोटी वाला काम तुहानू हो जूगा तुसी पढ़ाई करनी है इन्ने क सौखे कोर्स अवेलेबल ने घर बैठे मोबाइल दे उत्ते क्लास लाउंदे लाउंदे बिना कोई एग्जाम दिते तुसी पास कर सकदे हो असाइनमेंट ते अटेंडेंस दे नाल एंड लोन भी तुहानू $1,50,000-$1,50,000 का मिल सकता पर वह डिपेंड करता तुहाडे फैमिली साइज ते तुहाडी इनकम ते. सो तुसी अपना लेना चाहुंदे एस्टीमेट कि सानू भाई किन्ने दा पैसे मिल जाणगे तो तुसी कॉल कर लो पूरी डिटेल 437-264-31-75 जदों लोन आ गया पैसे तुहाडे खाते च आ गए इन्हां नूं $199 दे दिओ. मैं हुंदा मैं तां वध ही दे दिंदा पर $199 इन्हां दा मेहनत ना पाया इन्हां दी सर्विस फीस इन्हां नूं देनी आ 437-264-31-75 437-264-3175 437-264-31-75 437-264-31-75 437-264-31-75 437-264-3175 बहुत शुक्रिया भाई जी धन्यवाद.

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार आ गया शनिवार की शाम की विच तुसी एक बार फिर तो एक प्रोग्राम ट्यून कर चुके हो जिदा नाम है रेडियो अंदाज चलो एम 5:30 ते रेडियो अंदाज से विच मैं थोड़ी होस्ट परम थोड़ा साथ दे रही हाँ मेरे वालों सारे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े आदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम अर्ज है। आज आपके दिलों पर मोहब्बत भरी दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। समीन, गम और खुशी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो धूप और छांव के साथ साथ जिंदगी के सफर के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए, मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए। मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, सोच का भी तो जरा थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए।

समय चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उमदा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उमदा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।